0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आत्मा त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट केन्द्र कार्पेट।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ব্যাংকিং ফেমাস বিলি চোদি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ গোপ্য বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নিয় দেপ্রে ছালি জানকারী রি বিষয়া নিয় কল করিম সময় নিয় ঠকদিল খামো ব্যাংকর বে কর্মচারী বীরা নিয় দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংকি নীল করিম নিয় তানি সতর্ক তানা ঠদরিকা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাংকর ক্যালে জনহিতারী জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদাই ভাইলাই
2: तिम्रो जन्मदिन को अवसर में यो औठी उपहार तिमीलाई
3: वाओ कस्तो राम्रो डिजाइन को अनि कति चमकिलो कहाँ बनाएको नि डार्लिंग
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरी मा बनाएको नि
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न अझ हाम्रो विवाह मा त सुनको हार मंगलसूत्र सिकरी टप जन्तर चन्द्रमा छड्की तिलहरी चुरी बिन्दिया चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि
4: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना राशि अनुसारका पत्थर चाँदीका

0: मैं तुम्हें यहाँ रोज आते हुए देखता हूँ, अकेले किसी का इंतजार कर रही हो।
1: तुमसे मतलब? ओ शिट, आई एम गेटिंग लेट।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम 55